नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नह

0: कृष्ण जय गोपाल बाल बाल लाल कृष्ण जय।
1: यू जस्ट हर्ड भगवान बाबा डिस्क्राइब द राम राज्य, द रेन ऑफ राइचियसनेस एंड ट्रूथ एंड इट्स रेलेवेंस इन टूडेज लाइफ। दिस डिस्कोर्स वॉज डिलीवर्ड ऑन द 29th May 1996।
2: You are tuned to Disco Stream of Radio Sai, bringing you the divine message of Bhagwan Sri Satya Sai Baba, 24 hours a day, 7 days a week. Sai Ram and happy listening.